खिंचवा देना, अच्छा नाच रंगे तारा खिंचवा देना, नरता लाज रंगे तारा खिंचवा देना, वो बड़े बंगे तुम बंगे, जरा बुत गिफ्टी लोले, ले ले यो ना ना डारी, फोनी आंगला